भंडारा दिसु देह तिसै क्या चारा नानक सच सुवरन हारा आसा महला पहला।

गुरु प्यारी सात संगत जी की इतनी इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी जी। कीर्तन करदिया होया बिंत भुलां की खिमा बख्श देनी जी। आओ जी हुण अति सत्कार जो ज्ञानी दलजीत सिंह जी उन्हां पास लड़ीवार प्रसंगा की कथा सरवण करना करिए जी। आप सब जी ने असीस बख्शिश करनी, फतेह गजाउणी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

नमः अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो जास बिसंबर के नाम जपत अगणत अनेक। भेद प्राण सिमरत सुधा खर किने, राम नाम में का खर किन कायक। जिस दिए बिसावे ताकि महिमा गनी न आवे। कांकिये कैदास तुहारो, नानकुन संग मोहे उधारो। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कह मन विश्राम रहाओ। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु के सिमरन दुख जम न सह। प्रभु के सिमरन काल पर हरै, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अनदिन जागे। प्रभु के सिमरन भवनम व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। प्रभु का सिमरन साध के संग शरण रधा, नानक हर रंग। प्रभु के सिमरन रिसिद नवनिध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा। प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगे मानी। प्रभु के सिमरन होय सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल पला। से सिमरै जिनाब सिमराय, नानक ताकै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊँचा, प्रभु के सिमरन उदरै मूचा। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु के सिमरन सब किछु सुझै। प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहे समाय। प्रभु जी बसाय साध की रसना, नानक जन का दास संतसना। प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते। प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रधान। प्रभु को सिमरे से बेमोता जे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिनाब दयाला, नानक जन की मंगेर वाला। प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलहारी। प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरे तिन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हरनेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कबू न चूरे। प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी। प्रभु के सिमरन नैचल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन। प्रभु के सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरे से जन जन को प्रभु माया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पै सजति दाते, हर सिमरन नीच चौकुन जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा।

शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाय। जय मा प्यान दूत जम दलय, ते केवल नाम संग तेरे चलय। जह मुश्किल हो वे अत पारी, हर को नाम किन माहे उधानिया। निकुने चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कूट पाप पर हरे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाभु सुखनेरे। सकल श्रेष्ठ को राजा दुखियार, का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोरी बंदना परे, हर का नाम जपत निस्तरे। अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आगावे। जह मार्ग हो जात के लात, हर नाम संघोत सुहेला। ऐसा नाम सदा त्याये, नानक गुरमुख परम गत पाइये। छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत तह पार पराय। अनिक बिगन जय आय संगारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनिक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ मैला मल कबू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो हो मन रंग, नानक पाइये साध कै संग। जह मर के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम हुआ संग तोसा। जय पेंडे मांद गुबारा, हर का नाम संग जियारा। जहाँ पन तेरा को न सुजानू, हर का नाम ते नाल पछानू। जह मा प्यान तपत बहु काम, ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जा तिर का मन तु जाक रखे, तह नानक हर हर अमृत बरखे। भगंजना के बर्तन नाम, संजना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत सन दिन रात, हर हर ओकर साध कमात। हर जन के हर नाम निधान पार, ब्रह्म जन की नो दान। मंथन रंग रति रंगे के, नानक जन के वृत विवेक। हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत पुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कशनाए वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा।

नौ कण पृथ्वी फ्रैचर जीवे मह उदास तपी सरथिवे अगन माय होमत परान कन्न कसब है वर भूम दान देवल्य कर्म करे बहुआ संजयन मारक संजमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तव विहो मैं मैल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे करब गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बो साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरे जल तो वे बहु दे अनी सुदका होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा उच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत सियाणम जमका पौ ब्यापे अनेक जतन कर सन्ना त्रापे पेक अनेक अगन नहीं बुझे कोट पाव दुर्गे नहीं सिजय छूटस नाही ओ पयाल मुहे ब्यापे माया जाल अवर करतू सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे सा संगे हो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे जिस जन को प्रभदर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिटे अपमान आपस को जो जाने नीचा सो गनी सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल किरीना हर हर नाम तिन काट कर चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टि।

स्वामी सकल कटा के अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे आपन संगा प्रभराते। तुम्हरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जानस कोय। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम। सकल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरया। सकल उदम में उदम पला हर का नाम जप हो जी सदा। सकल बानी में अमृत बानी हर को जा सुन सन बखानी। सकल थान ते ओह उत्तम थान नानक जे कट वसै हर नाम सलोक। निर्गुण यार इयान्या सो प्रभ सदा समाल। जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल अष्टपदी। रमैया के गुणचेत परानी कवन मूलते कवन दृष्टानी। जिंतु साल सवा सिगारिया कर भगन में जिने उबारा उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद। बिरद प्याओ पर साग सैन मुख प्याओ बैठ का उदैन। एहो निर्गुण गन कुछ गुण कछु न बूझे बक्स लियो तो नानक सी जय। जय प्रसाद तरु पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै। जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला। जय प्रसाद भोगे सबर सा सगल समग्री संग साध बसा दीन हस्त पाव कर नेत्र रचना। तिथे त्याग वर संग रचना ऐसे दोख मूडन व्यापे नानक काटले हो प्रभापे। आहदन जो राखन हार तिस्यु प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नव निध पावे तास्यु मूडा मन नहीं लावे। जो ठाकुर ससदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे। जाकी टैल पावे दरगे मान तिसे विसारे मुगत जान। सदा सदा अपूलन हार नानक राखन हार अपार। रतन त्याग कौड़ी संग्रचय सा छोट झूठ संग मचे। जो छड़ना सो स्थिर कर्माने जो होवन सो दूर प्राणे। छोड़ जाए तिस आश्रम करे संग सहाय तिस पर हरे। चंदन ले पुतारे तोये गर्द प्रीत पसम संग होए। अंधकूप में पतित बिकराल नानक काटे हो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पे कंतर मलमाया छपस नाय कछ करे छपाया। बाहर

ओंकार। जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया गनत साहु अपनी देरा खात पीत बरतै हन दुलास अपनी अमान कच बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोज करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त सागे राखे प्रभु की आज्ञा मानय माथे उसते चौगुन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल। अनक पात माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की

के नाम की पीर सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तंदन कुटुम सभाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज बंतन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असह वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या पशु प्रकृत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण।

आदि मिथ्या चिन्ह पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे, नानक हर हर नाम लय वृथी सागत की आर जा, साज बिना कहो सुचा वृथा नाम, बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा ब्याहे, मेघ बिना जो खेती जाए, गोबिंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यो कृपन के निरारत दाम, तन तन ते जन जे गट पस्यो हर नाव, नानक ताके बल बल जाओ, रह तवर कछवर कमावत मन, नहीं प्रीत मुखो गंडलावत जान, हार प्रभु बर परवीन, बाहर पेक न काहू पीन, अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे, जिसके अंतर

दी। जय प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए। जय प्रसाद सुगंधत लावे तिसको सिमरत परम गत पाव है। जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख बसनाट पैर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हडावे तिसे त्या कतवर लुभावे। जय प्रसाद सुख से सोई जय मनार पड़ता का जस गावी। जय प्रसाद सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तेरो रहता त्रह्मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दर गय मान पावे नानक पसेति कर जावे। जय प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम सनेही। जय प्रसाद तिराओ ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताकै। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु चे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे हे। जय प्रसाद आभूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की। जय प्रसाद असव हस्तवारी मन तिस प्रभु को कब हु न बिसारी। जय प्रसाद बाग में लगता ना राग प्रोए प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत्य से त्याई तिसे त्याय जो एक लखे इहां हुआ नानक तेरी रखे। जय प्रसाद करहे पुन बहुदान मनार पर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कहे। जय प्रसाद सुन है करनाथ जय प्रसाद पेखे बिस्मात। जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख से जय बसना। जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है। जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख से समाव है। सा प्रभु त्याग वरकत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभु को मूल न मन हो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तो ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू तास्यों राच। जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जब सोए। आप जपाए जपै सोनो आप गावाए सुहार गुन गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए। श्रम निधान प्रभु तेरी मया आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लाभ हो तित लगह हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ। सलोक गम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता सा जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध के संग मुखु जल होत साध संग मल सगरी खोज। साध के संग मटे अभिमान साध के संग प्रगटे सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत निभेरा। साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बनना कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी। साध के संग गोचर मिलय साध के संग सदा प्रफुल्लय। साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन। साध के संग न कतहु तावे साध संग अस्तित मन पावे। साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न बीगा पैर। साध के संग नाई को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नाई हों ताप साध के संग तजे सब आपे जाने। साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनाई। साध के संग न कब हूँ तावै साध के संग सदा सुख पावै। साध संग बस तो गोचर लहे साधु के संग अजर सहे। साध के संग बस है थान ऊँचे साधु के संग महल पहुँचे। साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कह कुर्बान। साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु के संग सोतन पावे जिसनन ते सबको वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन।
साध के संग सर्व थान गाम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल, साध के संग कलु कत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उतरे साध सुनरस है, साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग न मनते पिसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग काट कर डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै अमारी, साध के संग मटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊँचते ऊँची, साध की शोभा मूँचते मूँची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा, सोए अवर न पेखय कस बिन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग जैसे सूर्य सर्प को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक जो बस्ता को खोदे को चंदन ले, ब्रह्म ज्ञानी का हे गुनाव, नानक जो पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे महल नला के जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रकाश जैसे तरु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अपमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊँचते ऊँचा मन अपने है सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जर पय नानक जन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सकल किरी ना तम रस, ब्रह्म ज्ञानी छीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर श्री, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी के करीबी समा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कहे हो सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रभार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अभुत त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बिन्ता पिता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी के होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बट बागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाए, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाया दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पा, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जिया कदाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का अतनी, श्लोक उर तारे जो अंतरनाम सर्व में पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तारे, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना प्रस, मन में प्रीत निरंजन द्रस, पार्त्रे रूप न पेखे नेत्र, साध की टैल संसंग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री चित पंच दोगते रहत, नानकूठ मदे को ऐसा प्रस, वैष्णव सोजी सुपर सुपर सन, विसन की माया ते हुए पिन, कर्म करत होवे न करम, तिस वैष्णव का निर्मल तरम, गाँव फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मंतन तर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होत कृपाल, आप दृढ़ अवरे नाम जपावे, नानको वैष्णव परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मंते पिन से सगला परम कर, पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल कोवे, तिस भगवती के मतुतम हुए, भगवंत की टहल करे नितनीत, मंतन अर्पय बसन प्रीत, हर के तन हृदय बसावे, नानक के सा भगवती भगवंत को पावे,
सो पंडित जो मन पर बोधे राम नाम मातम है सोदे राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नावे वेद प्राण सिमृत बूझे मूल सुखम में जाने अस्तूल चौह वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो वर्णा में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गतोय सात संग पावे जन को एक कर कृपा अंतर उतारे पास सफेद मुगत पात्र को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम का हो जुगत कित न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया थ्रु करम जिसके मन पारुण का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नतरी आया दाद संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर के प्रमाण अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे सकल संगातम उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ किया गया तम हितावे जीवन मुख सो कहावे तैसा रुक तैसा उसोक सदानंते नहीं वियोग तैसा सुवरण तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ता ऐसा ही जुगत नानक उपरुक कहिए जीवन मुकद पार रम के सगले ठाव जित कर राखे तैसा तिन्ना हो आपे करण करावन जोग प्रभ पावे सोई पुन होग पसरे हो आप तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश दास दास दास दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक उस्तद करहे अनेक जानांत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविधन प्रकार पदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैतीरथवासी कई कोट बन परमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सुर होते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट कब का विचारे कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक करते कांत न पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगा तम निकोर कई कोट पर द्रप करे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया आश्रम माए कई कोट परदेश परमाए जित लावो तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट से जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पवन पाणी बैसंतर कई कोट देश को मंडल कई कोट सस्य सूर नक्षत्र कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतारे नानक जिस तिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत रसासत कई कोट किए अर्थन समुद कई कोट नाना प्रकार जन कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरि मेर सुवरण थीवे कई कोट जखे किनर प्रसाज कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगा सब ते नेहरे सबू ते दूर नानक पर पतरे हावरपुर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर्क सुर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट भोजोनी फिर रहे कई कोट बैठती खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चंद जय जय पहना ते ते राखे नानक सब किस प्रभ के आते कई कोट बै बैरागी राम नाम संग तिन लिबलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्यास तिन को मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मागे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सुप्रसन्न नानक ते जन स्था धन तन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मण कई कोट होय अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसर्यो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभते हुए प्रमाय समाता कांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हो तातम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारी को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय असत सदी जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मर सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कर्ण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलहारण जल तल मयल सोय अष्टपदी।

कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभावे मानुकत पावे, प्रभावे ता पत्थर त्रावे, प्रभावे बिन सास तिरा के, प्रभावे ता हर गुण पाख है। प्रभावे ता पतत उदारे, आप करे आपन विचारे, तुआ श्रिया काव स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर नावे। कहो मानुक ते क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब कुछ ले, ज्योतिष पावे सोई करे, अनजानत भिख्या में रचे, जे जानत आपन आप बचे। परमे पुला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुण फिरावे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जना मिले, खिन में नीच कीट को राज पार, ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु नावे, तिस तत्काल दे दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीस, ताखा लिखाना गने जगदीश, जी अपने सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण परम प्रकाश, अपनी बढ़ता बनाई, नानक जी वे देख बढ़ाई। इसका बल नाई साध करण कराम, सर्व को नाथ आज्ञाकारी, बपरा जियो ज्योतिष पावे सोई कुंथियो, कबहू ऊंच नीच में बसे, कबू शोक हरक रंग से, कबू निंचिन व्यवहार, कबू अवकाश ध्याल, कबूता ब्रह्म विचार, नानका मिलावन हार। कबहू नृत करे बहु पहात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू माँ क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो त्रवाल, कबू होए बहे बट राजा, कबू पेकारी नीच का साजा, कबू आप कीरत में आवे, कबू पला पला कहावे, जो प्रभरा खेती विह रहे, गुरुप्रसाद नानक सच कहे। कबू होए प्रणत करे बख्यान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू तट तीरथ स्नान, कबू से साधिक मुख्यान, कबू कीटा पतंग होए जियानक, जोन परमे परमी या नाना लोग, जो स्वागत दिखावे, जो प्रभावे तिवे न छावे। ज्योतिष पावे सोई होए, नानक दूजा वर्ण कोई, कबू सासंग त्यो पावे, उस स्थान ते बौर नावे, अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम प्रत्येक रंग सदा बसे पार, उनके संग ज्यो जल में जला एकटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु के साधु कुर्बान, सलोक सुखी बसे मस्की निया, अपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज मान, सुनर्क पाती हो सुवान।

आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट ना आवे। सर्व किरण जाका मन होए को नानक ताकि निर्मल सोई। जब लग जाने मुझते कछ होई तब इसको सुख नाही कोई। जब जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी में तब लग ने चलना ही चीज। जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहज कटे लग कोटतावे त्रिपतावे माया पाछे पावे। अनेक भोग भिख्या के करे ने तृप्तावे। खप कब मरे बिना संतोख नहीं को। राजे सुपन मनोर वृत्ति सब काजे ना ब्रंग सर्व सुख होए। बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप। सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार। इसके याद का विचार जैसी दिस करे तैसा होए। आपे आप आप प्रभ सोए जो किनो सब अपने रंग। सबके दूर सबू के संग बुझे देखे करे विवेक। आप हे आप एक आप हे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए। नानक सदी रह समाए। आप उपदेश समझे यार समझे आप। आप रचया सबके साथ आप किनो अपन विस्तार। सब कुछ उसका हो कर निहार। उसने बिन कहो कि छोए था अंतरंतर एक कोई सोए। अपने चंड ताप कर निहार कहो तक करे डंगा पार। मन में आप मन अपने माए नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद की ने वख्यानी। सच सच सच सबकी ना कोट मदेखने बिरले जीना। पला पला पला तेरा रूपा सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी। घट घट सुनी सरवन बख्याणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। सलोक संत सरन जो जन परे सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपति। संत के दुखन हर जा कटे। संत के दुखन जमते नहीं छुट्टे। संत के दुखन सुख सब जाए। संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलिन। संत के दुखन सो बाते ही। संत के अत्य को रखे न कोए। संत के दुखन थान प्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करे नानक। संत संग निंदक पी तरे। संत के दुखन ते मुख पवे। संतन के दुखन काग जो लवे। संतन के दुखन सर्प जोन पाए। संत के दुखन त्रिगत जोन क्रमाए। संतन के दुखन तृष्णा में जले। संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन तेज सब जाए। संत के दुखन नीच नीच आए। संत दुखी कथाओं को नाए। नानक संत पावे तावे भी कत पाए। संत का निंदक माताई। संत का निंदक टिक न पाई। संत का निंदक मा त्यारा। संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज दीन। संत का निंदक दुखियार दीन। संत की निंदक को सर्व रोग। संत की निंदक को सदा विजोग। संत की निंदा दुख में दुख। नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा पवित। संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागे। संत के दुखी को सब त्यागे। संत का दुखी मांगकारी। संत का दुखी सदा भिखारी। संत का दुखी जन्मे मरे। संत की दुख ना सुखते टरे। संत के दुखी को ना ही ठाओ। नानक संत पावे ता लय मिलाए। संत का दुखी अत बीते टूटे। संत का दुखी कितै काज न पहुँचे। संत के दुखी को ध्यान परमाइए। संत का दुखी उजड़ पाइए। संत का दुखी अंतर तीत हो था जो साज बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किशनाए आपन भी जा पे ही खाए। संत के दुखी को वर्ण राखन हार। नानक संत पावे तालय उभार। संत का दुखी ओ बिल्लाए जो जल बीन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पाव के दन नहीं त्रापे। संत का दुखी छुटे केला जो बाढ़ दिल खेत माहे दुहेला। संत का दुखी धर्म दे रह। संत का दुखी सत में त्याग के कीर्तन का दूरी पया। नानक जो तिस पावे सोई थी। या संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए। संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा से काइए। संत को दुखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दुखी की पूजे ना आसा। संत का दुखी उठ चले निराशा। संत के दुख न तृष्टे कोई जैसा पावे तैसा कोई होए। पया कीर्तन मेटे कोई नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करने हार। सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात। इसे त्याव सास ग्रास सब कुछ वर्ते तिसका किया। जैसा करे तैसा को थिया। अपना अकेला करने हार दूसर कौन कहे विचार। जिसनों कृपा करे तिसा अपन नाम दे बड़ पागी। नानक जन से सलोक तजो सियानब सुरजन हो। सिमरो हर हर राय का सरमन रखो। नानक दुख परम भव जाय अष्टपति। मानुक की टेक मृति सब जान देवन को एक भगवान। जिसके दिए रहे अकाय बोर न तृष्णा ला गया है। मारे राखे एक को आप मानुक के कृष्णा ही हाथ। जिसका कुंभूज सुखोए जिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए। नानक बिगन न लागे कोई। उस तत्मन में कर निरंकार कर मन मेरे साथ व्यवहार। निर्मल स्नान पियो सदा सोहिला कर ले जियो। नैनो पेक ठाकुर का रंग सासंग। बिन से सब संग चरण चलो मार। गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर। हर कर्म सरवण हर कथार दरगे नानक उजल मथा। बड़पा गीते जन जगमाए सदास्तार के गुण गाए। राम नाम जो करे विचार से त्रवंद गनी संसार। मंत्र मुख बोले हर मुखी सदा सरा सदा जानो ते सुखी। एक एक एक पछाने तुत की ओ सोजी जानने। नाम संग जिसका मन मान्या नानक ने निरंजन जान्या। गुरु प्रसाद आप न आप सुजे तिसकी जानो।

अंतरे प्रभुराता गुरुप्रसाद नानक इक जाता श्लोक। फिरत फिरत प्रभाया प्रयात सरना नानक की प्रभेनती, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपति जाचक जन जाचे प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर पार मेरी श्रद्धा पुरुष दास दर प्रभ के गुण गावो साथ साथ प्रभ तुम्हें त्याम चरण कमल से लागे प्रीत भगत प्रो प्रभ की नित नीत। एक कोटे को आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृश्य मां सुख होय रस पावे बिरला कोई जिन चाके से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नि डोला ने सुबर प्रे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परिसन आन सब त्याग अंतर प्रगासन दिन लाग। बटपागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुखोय सेवकी मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवकी नुसदा निहाल। बंधन काट मुकत जन पया जनमरन दुख प्रम गया इस पुनी सरदा सब पूरी राव रहा सद संग जूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक पक्की नाम समाये सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे घर में राखे गुर प्रसाद को बिरला लाके सो क्यों बिसरे जे पिते काटे जन्म जन्म का टूटा गाढ़े। गुर पूरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम मान त्याग जप हो हर नाम सिमर समर समर सुख पाव हो आप जपो अवरे नाम जपाव भगत पाए त्रिय संसार बिन भक्ति तनो सिछार। सर्व कल्याण सुख निध नाम बुढ़ जात पाए विश्राम सगल दुखा होवत नास नानक नाम जप हो गुणदास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मन तनन तरी हे सुआओ। नेत्रो पेख दर्श सुख होए मन बिकसै सा चरण तोय भगजना के मंत्र रंग बिला को पावे संग एक बस दीजे।

कारण करतार भगत जना के प्राण धार जो जो जपे सोहे पुनीत भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सरबे कुण मुकत मोख पाए किन मकर के गुण गाये निकराज भोग बडे आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हरनीत बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकन्नी सोभा तनवंत हृदय बसे पुरन गुरमंत साध संग प्रभ दिहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सरगुंदर गुंदर का सुन समाधि आप आपन किया नानका पिहि प्रजा पाष्टपदी जब कार्यो कशना दृष्टेता पापन तब के तिहोता जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कुमा जब इसका वरण चहन जाप तब हर शोको किसे व्यापत जब अपना आप पार ब्रह्म तब मोका किसोत परम अपन केला प्रतीजा नान करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कौ किसको गनी जब एक हर गम पार तब नरक सुर्ग कौ कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ से सुवाय तब से सकत कहो हो कित ठाए जब आप हे आप अपनी जो तरे तब कौन डर कौन कदर डरे अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर गम पार अब नासी सुखा अपना सुनते जन्म मरण को कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अब कत गोचर प्रभे का तब चित्र गुपत किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर का दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा चेह निर्मल पुरख पुरख पत होता ते बिन मेल कहो क्या तोता जय निरंजन रंग का निर्वाण ते कौन को मान कौनो अभमान जय स्वरूप केवल जगदीश ते छाल छदर लगत कहो कि जय जो सर्पी जो संग समावे ते किसे भूखा तृप्तावे करण करावन करने हार नान करते का ना है सुमार जब अपनी सुबह अपने संग बनाई तब कौन माए बाप पितर सुत पाई जय सर्प कलापे पर बीन तिह वेद कतेब कहा कौ चीन जब अपन आप उतारे तो सगन अपसगन कहा बिचारे जे अपन उचापन आप नेरा ते कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्मा नानक अपनी गत जान हुआ जे जान हो आप जे अचल छे तबे समाया वहाँ किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश त्योगुण का ना ही प्रवेश जह एक कह एक एक भगवंता ते कौन चिंत किस लागे चिंता जे अपना पतियारा ते कौन कथे कौन सुनिहारा बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस को आप हे पहुचा जय आप चोपर पंचकार त्योगुण में किनो विस्तार पापन ते पई कहावत को नरक को स्वर्ग बन छावत आ

खेल संकोचे तो नानके के जे अब कत भगत है आप जे पसरे पासार संत प्रताप दुहु पाका पहतनी उनकी शोभा उन्हु बनी आप है कौतक करे अनद चोज आप है रस भोगन जोग जिस पावे तापन ना हिलावे जिस पावे तुस खेल खिलावे बेसुमार अथा अगनत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जिय जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानक को पसरिया दूजा कहे दृष्टा राष्ट्रपति आप कथे आप सुनय हार आपे है एक आप विस्तार जात पावेता श्रेष्ठ उपाय अपने पाणे लय समाये तुम ते पिन नहीं किछु होए आप सु सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बीता नानक सकल श्रेष्ठ का जीता जिय जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल नाथ कुनाथ जिस राखे तुस कोई न मारे सो मुआ जिस मन हो बिसारे तिस जबर का को जाए सब सिरे निरंजन राय जिय की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानो सात गुण दान बेअंत पार नानक दास दा बलहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जान आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपाले जियन बहु पात जो जो रत्यो सत से त्या जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करहे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जानया जान लागा हरे कहनाए तुसकी आस न बिरथि जाए सेवक को सेवा बनाए हुकुम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंधिन पूजय गुर के पैर एह लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक कर प्रभा पह मेले सासंग मिर कर हो आनंद गुण गाओ प्रपरमानंद।

आवे जाहे। तिस्ते दूर कहा को जाए उबरे राखनहार त्याय नृपो जपे सकल पौ मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुचनहार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान तरजामी पुरख प्रदान।

भाव तरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अनद करे।

हे मेरे वाहिगुरु, मैं तेरे चरणा तो वार वार कुरबान जाना। वाहिगुरु, मेरे कोलों केड़ी भुल हो गई, तू मेरे नाल बोलदा नहीं, कारण कवन अबोल। महाराज, बोलदे क्यों नहीं मेरे नाल? नाराजगी है कोई? उस परमात्मा दे अगे एक प्रेम भरे बोल ने, जिदा जिवें अपना कोई कोई मित्र प्यारा, कोई रिश्तेदार, सज्जन मित्र कोई नाराज हो जावे, आपां कहिंदे ने किहड़ी गल दी नाराजगी है, बोलदा काते नहीं, मेरे नाल गल क्यों नहीं करदा? मेरा मन करदा है मैं तेरे नाल गल करां। भगत जी उस परमात्मा अगे कह रहे ने, हे परमात्मा, मेरे नाल कोई नाराजगी है? कारण कवन अबोल, की कारण हो गया? मेरे कोलों केड़ी गलती हो गई महाराज? मेरे नाल बोलदे नहीं, मेरा तां तेरे तों बगैर होर कोई नहीं है, मैं तां गरीब हाँ, निवाणा हाँ, तू दयालु है। कारण कवन है अबोल? महाराज कारण दस दिओ, रहमत कर दिओ, जे मेरे को कोई भुल हो गई है तां मैं आप जी दे कोलों माफ़ी मंगदा हाँ। रहाओ बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। महाराज मनुखा जन्म मिल गया, जदों दा ते तू मेरे नाल बोलिया नहीं, मैं तां जूना दे विच भटकदा फिर रहा हाँ, बड़े जन्म जूना विच भटकदियां लंघ गए, हुण मनुखा जन्म मिल गया महाराज, हुण मेरे नाल बोल पवो, हुण मेरे नाल नाराजगी ना करो। भाव की है? शब्द दे विचों भाव की आ रहा है? बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन। जेडे बोल हन कारण कवन अबोल, इस शब्द का की भाव है? महाराज कृपा।

तुमरी गत मित तुम ही जानी। बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस जिठे शब्द हजाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावै ताए। सब ताई होए सहाय।

प्रभ साथ अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्कल हो वै अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी। अनक पुन है चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे। सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तुहे सुखिया। ला करूरी बंद ना परे हर का नाम जपत निस्तरे। अनक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत आगावे। जेह मार्ग हि जात के लै तह हर हर तह हर नाम संग होत सहेला। जेह मार्ग हो जात के ला तै हर नाम संग होत सहेला। ऐसा नाम सदा त्याईय नान गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब तह पार पराही। अनक बिघन जह आय संघारे हर का नाम तत्काल उदारे। अनक जोन जनमै मर जाम नाम जत पावै बिसराम। हौ मै लामल कभू न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई है साध कै संग। जेह मार के गने जाहे न कोसा हर का नाम उहां संग तोसा। जे पैडै महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को ना सयानु हर का नाम तह नाल पछानु। जह महा भयान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहां त्रिखा मन तुझ आ करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान पाप ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत बिबेक। हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे ना भंग। हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाही वियोग। जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जी ना हर तन जन आव। हर धन जन को आ प्रभ दीना हर हर जन के ओट सतानी। हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते। सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै। हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे। नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वडभागी पाईए संत की सेवा नाम त्याईऐ। नाम तुल कछ अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वखियान। योग ब्यास करम त्रम क्रिया सगल त्याग बन मधे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बापाती। नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपिए। एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै। महा तो उदास तपी सर थी वै। अग्न माय हो मत प्राण कनक असव हैवर भूम। कनक असव हैवर भूम दानौली कर्म करे बहु आसन। जैन मार्ग संजम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावै। तौ पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहे। नान गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तिर दे छुटै गर्भ गुमान ना मन ते हुटै। सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तनते जा। तिस दे ही को बहु साधना करे मन ते कभू ना बिखिया टरे।
ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਧਰਾਪੇ ਪੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ ਕੋਟ ਭਾਵ ਦਰਗੈ ਨਹੀਂ ਸਜੈ ਝੂਟ ਸੁਨਾਹੀ ਉਪਿਆਲ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੇ ਗੋਵਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਂਗੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋਮੈ ਛੋਰੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਵਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆ ਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਾਗਲ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਣੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੀਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਪੇਖੇ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ

बिनवंता साजना की अचरज कथा। अष्टपदी साध के संग मुकूजल हो साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अपमान साध के संग प्रगटे सुज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णे कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे सुमानी साध के संग उचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग ना कतहु तावे साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यों नहीं बैर साध के संग ना बीगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही हौ ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनियाई साध के संग ना कबहू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त अगोचर लहे साधु कै संग अजर सहे साध कै संग बसे थान उच्चे साधु कै संग महल पहुचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीट कुटंब ने सतारे साधु कै संग सो धन पावे जिस तन ते सब को वरसावे साध संग परम धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नाही कशकाल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहा उहा सुहेला साध संग बिचरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उधरे साध सुन रसे साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग नामंत बिसरे साध संग सर पर निस्तरे साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संग कट कट डीठा साध संग पया ग्याकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एकस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोप ब्रह्म ज्ञानी कै दुष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जेक ज्यों बसदा कू खोदै कू चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैला लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे धार ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी का बंधन ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी लह तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार
ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए ब्रह्म

ज्ञानी कह सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।

ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साधु जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक, और तारे जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दास, पर त्रै रूप न पेखे नेत्र साध की टैल संत संग हित, करना सुने काहूं की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोड मदे को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए पिन, कर्म करत हो वै नेह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू बल की इच्छा नहीं बाचे कवल भगत कीर्तन संग राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक को बैसनु परम गत पावे, भगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम कर पूजय सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै तिस भगौती कीमत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नितनीत मन तन अर्पै बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म सोदय, राम नाम सारस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावे सो पंड फिर जो न आवे, वेद पुराण सिमृत बूझै मूल सूखम में जाने अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपै को नाम, जो जो जपै तुसकी गत होए साध संग पावे जन कोई, कर कृपाएं तरुर तारे पास प्रेत मुगध पाथर को तारे, सर्वरू का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितें ना पाइए धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर करम, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगै प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे, सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा, आत्म हितावे जीवन मुख सो कहावे, तैसा हरक तैसा सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा सो वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अपमान तैसा रंक तैसा राजान, जो व्रता ईसाई जुगत नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त पार, ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करण करावन जोग।

अनक भोग बिख्या के करै नै त्रिपतावै खप खप मरै बिना संदोख नहीं कौरा जय सुगुण मनोरथ बिरते सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बुढ़भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करनै हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो कुछ किन सोपन रंग सब ते दूर सबों के संग बूझै देखै करै विवेक अपह एक अपह अनेक मरण बिन सहवै न जाए नानक सदि हिरै समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचै सब कै साथ आप किनो अपन विस्तार सब कै सुसकाउ करनै हार।

संत का दुखन आर जा कटै, संत का दुखन जम तेने छुटै, संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक में पाए, संत का दुखन मत होए मलीन, संत का दुखन सोभा देहीन, संत के हत्ते को रखै न कोई, संत का दुखन धान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा।

संत का दुखन सब कुशल है, संत का दुखन तेर सब जाए, संत का दुख नीच निचाए, संत दुखी का था को नाहे, नानक संत पावे ता ओई भी गत पाहे, संत का निंदक महाताई, संत का निंदक खिन टिक न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदको सर्व रोग, संत के निंदको सदा बिजोग, संत के निंदा दुख मैं दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी,

करे सो सेवको किसते डरे। जैसा सत ऐसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरप्रसाद तद सब बूझिया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। न किश जन्मे न किश मरे, अपन चलता भी करे, आवन जावन दृष्टा दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रच थाप्यो थाप, अविनाशी नाही किश खंड, तारण तार रहे ब्रह्मांड।

सेवको प्रपालनहारा सेवकी रखा निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारै नानक सो सेवक सा सा समारै अपने जन का परदा ढाकै।

का मीठा सगल सामग्री कस घट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है। नौ निध अमृत प्रभु का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाध अन

0: अष्टपदी।
1: जे प्रसाद शक्ति अमृत काहे तिष्ठा कर को रख मन माहे।
0: जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमत परम गत पावे।
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ते आए सदा माने अंदर।
0: जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तरसना।
1: जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ते आइए ध्यावन जोग।
0: जे प्रसाद पार पटंबर हटावे तिसे ते आखत और लुभावे।
1: तेज सोई जे मन आठ पहर ताका जस गावी जे।
0: जे प्रसाद तू सब को मन मुक्ता को जस रसन दुखान।
1: प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जब दरगा माल पावे नान पास सिद्धि कर जावे।
1: प्रसाद रो कंचन देही लिबला वो तिस राम स्नेही।
0: जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: जे प्रसाद तेरे सगल छिदर ताके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके।
0: जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उठे।
1: जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे।
0: जे प्रसाद आभूषण कारी जाय मन के सिमर क्यों आस कीजै।
1: प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी।
0: जे प्रसाद बाग मिल्क धना राख प्रोई प्रभु अपनी मना।
1: बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई।
0: तिसे त्याई जो एक लख इहा हुआ नानक तेरी रखा।
1: जे प्रसाद करे पुन बो दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।
0: जे प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ सितारी।
1: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप।
0: जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
1: जे प्रसाद सब की जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे।
0: जे प्रसाद सुने कर्ण नाद जे प्रसाद देखे बिस्माद।
1: जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना।
0: जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभु त्याग और कत लाग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो।
1: प्रसाद संसार इस प्रभु को मूल न मनो विसार।
0: जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताप लो जाप।
1: प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे।
0: जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तास्यो राच।
1: जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए।
0: आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ।
1: प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास।
0: प्रभु सो प्रसन्न बसा मन सोए प्रभु दया ते माति उत्तम होए।
1: सर्व निदान प्रभु तेरी मया आपो कशु न किन।

0: पदी।
1: साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत।
0: साध का संग मिटा अभिमान, साध का संग प्रगटा सुज्ञान।
1: साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नवेरा।
0: साध का संग पाए नाम रतन, साध का संग एक ऊपर जतन।
1: साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी।
0: साध का संग गोचर मिला, साध का संग सदा प्रफुला।
1: साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा।
0: साध संग होए सब की रीन, साध का संग मनोहर बैन।
1: साध के संग न कतु तावे, साध संग स्थित मन पावे।
0: साध के संग माया थी भिन्न, साध संग नान प्रसो प्रसन्न।
1: साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत।
0: साध संग किस्यो नहीं बैर।